0: कला रखनीश के बादशाह जी महारावा
1: कादरी हरकार गुरु गोविंद सिंह बेग सारा यार गुरु गोविंद सिंह श्री पिता महाराज तांतन श्री जीवन सर पाशा महाराज आप पाशा महाराज आसा दीवार संपूर्ण कीर्तन करवाए शब्द कीर्तन कर दें आसा दीवार कीर्तन कर दें बेंद कर दें पुनः गलतियां होंगी हो गया अंजान बजे सोच के माफ करना सर जी अगर समझ कोशिश करनी महाराज की बाणी स्पष्ट बल बलती बख्शिश करनी महाराज संतान और गुरमुख प्यारे शब्द पेट पूजो माया हाजर करते ने पाशा जी आप नाम जानी जान सबना दी मनोकामना भावनावां छुपन कनिया सेवा लेखे चलावना सब बरकत नाम बने दीदार वजना अमृत मिला जागना बख्शिश अपने चरणा की प्रीति बख्शिश करनी हरदो मदान फतेह करनी यात्रा सफल करनी।

जले हरी थले हरी उरे हरी बने हरी गिरे हरी गुफे हरी छिते हरी नब्बे हरी इया हरी उहा हरी जिमी हरी जमा हरी अलेख हरी अभेख हरी अधोख हरी अदवाख हरी अकाल हरी अपाल हरी अछेद हरी अभेद हरी अजंत्र हरी अमंत्र हरी सो तेज हरी अतंत्र हरी अजात हरी अपात हरी अमित हरी अमात हरी अरोग हरी अशोक हरी अभर्म हरी अकर्म हरी अजय हरी अभय हरी अभेद हरी अछेद हरी अखंड हरी अभंड हरी अडंड हरी प्रचंड हरी अतएव हरी अभे हरि अजय हरि अछे हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जप हरि जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृजस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि भजस्त्वंग भजस्त्वंग रटस्त्वं ठटस्त्वंग जिमितुहि जमातुहि मकेतुहि मकातुहि अभूतुहि अभातुहि अछूतुहि अछातुहि।

शिव से तपस्वी आद ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या अनंत है ज्ञान के भीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा बिछन के ते वेद पुराण के ते सिमर समूहन के होए होए बिताए है मुंदी मदार के ते अश्वनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भय है पीरो पिकामर के ते कने न परत एते भूमि ते होगा फिर भूमि ही मिले है जोगी ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है मान से मही पगरी कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिली से दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलते हैं शीर दे करे अनेक तोप ची कपट बेस पोस्ती अनेक दानी आवत है शीर्ष को कहां भयो मन जो पे कड़त अनेक डंड सोतुना डंडावत अष्टांग अथतीस का कहां भयो रोगी जो पे डारी रहे उर्द मुख मानते ना मुड नहीं रायो आद इस का कामना आदिस रा दामना पर बीन एक भावना बीन कैसे पावे जगदीस का शीर्ष पट कत का जाके कान में खजूरा धसा मुंडे छट कत मित्र पुत्र हूं को शोक सा आको चरिया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरों ना भूख सो कहां भयो भेड़ जो घसत पर शीश वृक्षण सो माटी को भचैया बोल पूछ रिजे जोग सो कामना दिन काम क्रोध में पर बिने एक भावना बिन कैसे भेट पर लोक सो नाचो करत मोर दादर कर शूर सदा घन घोर घन करो ही करत है एक पाए टटे सदा बन में रहत ब्रीच फूक फूक पा भूम श्रावक धरत है पहन अनेक जुग एक ठोर बास करे का गौर देश देश विचरत है ज्ञान के भीन महादान में न हुजालीन भावना एकीन दिन कैसे के तरत है जिसे एक स्वांगी को जोगिया बरागी बना कमू सन्यास वेश बान का दिखा वही को पौना हानि को बैठे लाए तारी को लोप की खुमारी सो अनेक गुण गावे को ब्रह्मचारी को हाथ पे लगावे बारी को डर

पांच बार गिदर पुकार पर शीतकाल कंचरो गधा अनेकदा पुकारे काब जप कलवत रियो कांस बीच चीर चीर चोटा कुठारन सुमारे काब फांस डार बुड़ जड़ गंग धार डार डार फांस डग मार मार डारे डूबे नरक धार मुड़ ज्ञान के बिना विचार भावना बिहीन कैसे ज्ञान को विचारे ताप के सहत जप पाइये अताप नाथ तापना नेक तन घायल सहत है जाप के गीत जप पाइये अत अजाप देव पूदना सदियो तू ही उचिरत है नव के उड़त जप नारायण पाइयत अनल आकाश पंच डोल वो करत है आग में जरते गत राड की परत कर पताल के बासी क्यों पुजंग ना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अन मानबो हिंदू तुरक को राफसी इमाम साफी मानस की जा सब एक पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो ना भेद कोई भूल ब्रह्म मानबो एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक जोत जानबो देवरा मसीह सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को ब्रह्माव है देवता दे जिस गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नाने के काने के दहे के बान खाक बद आदस और आब कोर लाव है अल अभेक सुई पुरानो कुरान हुई एक उस रूप से वह एक ही बनाव है जैसे एक आग देखनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पुरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे जैसे एक नदित करंग तोट उपजित है पान के तरंग से वे पान ही कहेंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही मैं समाएंगे केते काछी माछ केते उनको करत भच केते अच्छी अच्छी वैसे पच उड़ जाएंगे केते नब बीच अच्छी पच को करेंगे भच केते प्रत

तेज अतेज में अतेज से तेज लीन ताहे ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रुवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के बरमाई फिरत है। करवा सहद कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख भरत है। गायन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के भीन जग जा रही मरत है। सुधार देवता फिर उधार दानु पड़े बुधारे बुधक पर बुधारे जापसी। घसारे चंदन लगाए हरे चुआचार पूजा हरे पान चढ़ाए हरे लापसी। गाय हरे गोरन मनाए हरे माटी मट लिपारे भितन लगाए हरे छापसी। गाय हरे गंधर्व बजाए हरे किन्न।

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा अद्वै अनाश अंतुर तेज अनखट भंडार अदाता दुन सर्व प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता सिद्धि भरता सनाद आसन डोल अनुभूत करम नाता दयाल अनुभूत धराम ये सत्र मित्र ने जन्म जा जय पुत्र प्रार्थने मित्र मात ये करम ब्रह्म ने धर्म ध्यान जय नेह के ने व्योदान ये जात पात ने सत्र मित्र जय नेह के ने छह चित्र जय रंग रूप ने राख रेग ये जन्म जात ने भ्रम भेग ये करम भ्रम ने जात पात ने नेह के ने पितृ मात ये नाम थाम ने बरग ब्याद ये रोग सुख ने सतसाद ये त्रास वास ने देह नाश ये आत अंत ने रूप रास ये रोग सुख ने जुग जुगत ये त्रास आज ने भूम भुगत ये काल ब्याल कटे उन अंग अच्छे स्वरूप अख अभंग ये नेत नेत चरंद भेद ये अलग रूप कथत कतेव ये अलग रूप आसन डोल ये अमित अच्छा तोल ये ध्यान काज मन जन अनंत के कलप जोग सा दंत दुरांत तन सिद्ध काम प्रकाश हंत ये कलप एक आसन वितांत ये जतन योग विद्या विचार साधन तत् पावत न पार के उर्द पाद देश ब्रह्मांत के उर्द मत पावक चुलांत के सिमरत शास्त्र उचरंद भेद के को काप कथत कतेव के अग्न होत्र की पौन हार के करत कोट मृत को आहार के करत साक पर पत्र भच ने तद देह होत प्रताच्य के गीत गान गंधर्व रीत के वेद शास्त्र विद्या पतीत को वेद ऋत ज्ञात कराम को अग्न होत्र

मत्सवरम हे अग्निहोत्र के देश देव करम हे करद वीर विद्या विचार हे तदितास पायत न पार हो राजनीत को योग धरम हे शिवृत शास्त्र उत्तर सो करम हे उलियाद करम को हसदान को असमेध मखो बखान।

पुनरत नाच को गान गीत हो कर शास्त्र पद विचार की भजत एक पग निराधार के ने देख देखे वास के ब्रह्म देश ते सरदास के जल निवास के अगन ताप के जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पन प्रजांत नहीं तो दत्तास पायत अंत के करत गुड़ विद्या विचार।

तप ताप सर्व जले रुतना धन उचित इंद्र कुमार बलांग अनकेत स्वरूप अभेद अभियांग अनखंड भूत अच्छेद अछियांग अनकाल अपार दिया अस्वांग जे ठट्यंग मेर पवाकाश भुयांग अनखंड अमंड प्रचंड रंग जे रचिंग देव देव परांग सबकी नी दीन जमीन जमा ये रचिंग सर मकीन मका ये राग न रूप न रेख रुगांग ये ताप न साप न सुख सुखांग ये रोग न सुख न भोग भुयांग ये खेद न भेद न छेद छियांग ये जात न पात न माधि पितांग ये रचिंग छत्र छत्र शितांग ये राग न रेख न रोग भणांग ये देख न दाख न दो गणांग ये अंड ते ब्रह्मण रचियो दस चार कृ नव खंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्री सिंधुर बिंद न गिंद न गंग ये श्री जच गंधर्व फणंद पुजांग रज देव देव भिन्न रंग नृपाल नृपाल कराल दृगांग के कीट पतंग भुजंग निरंग रच अंडज सेत ज्योत भुजांग ये देव देव श्राद्ध पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातन पातन जो जुतंग ये तातन मातन भुवत भ्रासुतंग ये रोग न सुख न भोग भुवंग ये जंप किन्नर जच भुजांग नर नानप सिंह जाय किए कण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांद गणांग बभूत भुईक भुवान तुवांग ये अंडज जे सेत जेर जंग रच भूम आकाश पताल जिरंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फर फूल कली वो मेर आकाश निवासितांग रज रोज एकादश चंद्र प्रतांग दुत चंद दिनी सदीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए छत्र पाए छपाए दिए ये लोग छत्र चार चे नरगन नरगंधर्व देव देव से अंधुत अभुत अछूत मतंग अनगाद अभ्याद नाद गतंग अनखेद अभेद अशिंद रंग जे चार चतुर चक्र पिरंग ये राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग वो भंजन गंजन आश्रंग जे बंद देव देव निरंग अनगन्नर गंजा छप जंग रचे मणक माणक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभा अनगंज प्रतंग जे पारन बाद पूर मतंग अनखंड सुर पर दंड प्रभा ये जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुसिंध अधमुख ताप तपै कई कल्पन लो तप ताप करै नैने कृपा निध पान परै जय

रंगन रूप है, परे है पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अपंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है।

अभूम अभिज्ञा सदा अची तेज मानिया न आधे न ब्याधे अगाध रूप लेखिया अदोघ अदाघ अच्छे प्रताप लिखिया है न कर्म है न ब्रह्म न धर्म को प्रभाव है न जंत्र न तंत्र न मंत्र को लाभ है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगन सी भूत है न काम है न क्रोध न लोभ मोहकार है न आधे न गाध न ब्याध को विचार है न रंग राग रूप है।

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदि नाद का प्रख सु धर्म क्रम पर विहीन जंत्र मंत्र तंत्र जाको आदि वृक अपार हस्त किंड बिखे बसाए सब ठोर में निर्धार जात पात न ताज जाको मंत्र मात्र न मित्र सर्व ठोर बिखे रमियो जे चक्र चैन चित्र आदि उदार मूरत अगाद नाद नांत आदि नंत न जानी अपिखा देव दुरांत देवो न जानही जे मरम वेद कतेव सन को सन के चंद्र पाव ही न से जच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत भुकारी शिशक्र मुख्यार सर्व सर्व पतार के तर जापी जय जाप आदो गात जप अनाद वद ताप जांत्र मंत्र आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व टोर मेरे हो विराज धीराज राज प्रवीन जच गंधर्व देव दानो ब्रह्म क्षत्रिय माए बैसरंग के बिखे विराजे सुदर भी वह नाए गुड़ गण भिन्न भिकर ब्रह्म शेख स्वरूप राज न से मद उर्द न भूमकास अनूप जा जन्म कार्यक्रम न धर्म क्रम विहीन तिर चंद्र देव पूजा गुर के न अधीन सर्व सर्वपद पतार के तिर जानी है जय ज्योत शेष नाम सांस बने नित पूरन होत सो सुधन रे हटे सब सुर बिरदानो गर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्व पड़त पड़त थके महाकव गड़द गाड़ अनंत हार हार कयो सबो मिल नाम नाम दुरांत वेद भेद न पायो लख्यो न सेवक देव देव दानो मुड़ मानो जचन जाना जेब भूत भव भवान भूत आदना का नाथ अगन वाजले थले में सर्व ठोर निवास देगे न ने स्नेह अबे नाथ जीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व करता सर्व हरता सर्व दयाल अद्वेख चक्र चहन बरन जाको जात पात न भेग रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद आओ स्वामी आदि अपाल दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार बरन चन चक्र जागो चक्र जन आकार जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को भूपरान दुष्ट कंजन छत्र बंजन परम प्रगत परमात दुष्ट हरता शिष्ट करता जगत में जय गाथ भूत एक भविक भवान प्रमाण देव गांज आद अंत अनासरी पद परम प्रक अभांज धर्म के अनक्रम जेतक सकीन कतान पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ खच अपार भूमका जले थले मैं जमानी है जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता शिष्ट हरता काम दुष्ट हरना शिष्ट करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक सूत्र गालक दीन दयाल।

सर्व कर्ता सर्व दाता सर्व ज्ञान काम सर्व खंडन सर्व दान सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व क्रम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दान सर्व क्रम अधीन सर्व सिमरतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्टता विस्मृता रूप पार दुष्ट दंड पुष्ट खंड आद्य खंड भूमका जले थले मैं जब जाप खंड श्रेष्ठ चार विचार जित जानी है सब चार आद्य पासरी दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म ज्ञाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र औ मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास संत कुमार गाय गाथ के सब पूछा कर।

अनंत ध्यान दस थके सब कर कोट कष्ट उरांत गाय गाय थके गंधर्व नाच पशर पार सो सो थके मासुर पायो न पार। तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उजरियो मस्यु बैन सब प्रताप जगदीश को सकल बीतान दोहरा को आत्मा स्वरूप है का सृष्ट को विचार कौन धर्म को कर्म है को सकल विस्तार दोहरा का जी तब का मरण है कौन स्वर्ग का नरक को सुगुणा को मूर्ता कहा तर्क अतर्क दोहरा कुनिंदा जिस है कवन कवन पाप का धर्म कौन जो को भोग है कवन कर्म।

हरक राजा कवन हरक सुखा कवन को रोगी रागी कवन को तत्म है तवन दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सिट को विचार कौन रिष्ट को पृष्ठ है को सकल विस्तार।

आसरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उंदन रूप अते चन्नासर चंडन मंड बिहंडन धूम्र दर्शन मैक मते दान प्रहार नरक निवारण अधम उदार उड़ दे जय जय उसी मैं कासन वरदाना राम कपर्दन आदि प्रते डाउल डवंक बबर भवंक भुजा फरंक तेज बरंग नगुड़िया फांदे आयुध बांधे सन विमर्दन काल सुरंग अष्टाई चमक भूखण दमक असिक जमक फूंक फनंग जय जय उसी मैं कासन मर्दाना राम कपर्दन दैत जिनांग चंडासुर चंडन मंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामनित मंकण जा फरंगण फणी फुकारण जो जीते सरदार बिब्रखण दुष्ट प्रखण पुष्ट प्रखण दुष्ट मथे जा जय उसी मैं कासन मर्दाना भूम आकाश तल उर्ध अधे दाम निप्रहास सोछप निवासन धृष्ट प्रकाशन गुड़गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन दैन राचन धर्मृते सुनत अचंती अनल बिवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय उसी मैं कासन वरदान पाप विनाशन धर्म करे अग ओग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण सुध मते फणियर फुंकारण बाग बकारण शास्त्र प्राण साध मते सहति स्नान अष्ट प्रवाहन बोल बहन तेज तुलांग जय जय उसी मैं कासर मर्दन भूम आकाश पताल जलांग चाचर चमकारन चिच्छुर हारन धुम धुकारन द्रव मथे दाढ़ी प्रदान ते जोग जयंते मनुज मत

संकट निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकाखण तुन तबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद छे सुत्ता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय ओसी छत प्रकाखण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलख भुजंगी तुन तुरंग तिसरे करकसा कुटारे नरक निवारे अधम

चक्रत निसंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनि प्रासे सुख सरनासे सुब्रत सुबासे दुष्ट क्रसे चंचल।

कंट का बिराजे रुणझुण बाजे भ्रम भाजे सुन सुरांग कोकल सुन लाजे कल भाजे सुख बराजे माधुरांग दुर्जन दल दजे मंदन जय सबन भजे रोहरणम जय जय सिम का सिर मर्दन चांड चक्र धन आद गुरांग चाची प्रजन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूरपते धुमराज विधंसन प्रलय प्रजनसन जग विधंसन

ये रंग रूप ने एक धर्म ये सतरमित एक सार अच्छे रूप अभिचल अपार जानी न जाए रूप रेख कह बास तास कह कौन भेग कह नाम तास कौन जात ये सतरमित नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान करण स्वरूप ये चक्र जैनी रंग रूप ये खेत वेद ने कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग विराट सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग अपार युद्धंग अनूप यह रूप रेख ने रंग राग अनभिज अदाग जल थल मही पंतन दुरांत जय नेत नेत निस्दिन उचरांत पाय न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार के कोट इंद्र जय पान हार के कोट रुद्र जुग्या द्वार के वेद व्यास ब्रह्मानंत जय नेत नेत

पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारा है, पार न पाए सके पद्मापत, वेद कते अभेद उचारा है, रोजी ही राज बुलोकत राज करो खुरुहान की रोजी न टारा है, कीट पतंग कुरंग पुजंग भूत भविक भवान बनाए, देव अदेव खपे अहंग में उन भेव लख्यो भ्रम सिंह भरमाए, वेद पुराण कते पुराण हसेब थके कर हाथ नाए, पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों केन श्री पद मापत पाए, आद अनंत अगाध अद्वैत सुभूत भविक भवान बह, अंत विहीन अनंत माप अदाग अदुख छिद्र छह, लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभु वह, दीन दयाल त्याग श्रीपद सुंदर श्रीपद मापते है, काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय, देह विहीन सने सबोतन ने

ने कछ लावत खाओ तो तन एक न लगन पावे रखत है अपनो करदा कर पाप सबो न बेटना पावे। और की बात कहा कहा तो ससु पेट ही के पट बीच बचावा जाच बुजान सुदान देव अभे तुम्हें सभी कर जावा भूमा का अस्पताल सातर जाच।

देश प्रयोग कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हारे प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत का अंत के ताम सिधारे।

बांगे बंगाली फिर हांगे फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलते हैं रोह के रोहले मांग देश के मंगेले बीर बांग सी बुंदेले पाप पंज को मलते हैं गुखा गुन गावे चिन मचीन के तीसीस नहीं आवे।

को महेश गंग धान को अभेश कहीं आते हैं। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और कौपन अधीन सद अधीन कहीं आते हैं। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है। अपार

है कि सतरन के साल है कि मित्रन को फूकत है कि बिद्धा की बासी है जोगों को यंत्र है कि तेजों को तंत्र है कि मोहन को मंत्र है कि पूरन प्रकाशी है रूप को निवास हो है के बुद्ध को प्रकाश है के सीता को बांस के बुद्धों को घर है देवन के देव है निरंजन अभिव है अधेवन को देव है के

विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमाल गावे हबसी हल विध्यावे, पूरी बिन पार पावे आशा त्यनाश है। देवन को देव माँ देव के देव है, निरंजन अभय नाथ।

कामना के कर हैं कि बुद्धा को हर हैं कि सीता के साथी हैं कि काल हैं गुचाल के शीर कैसी शीरावत छास कैसी सतरानेर छपा कर कैसी छप कालिंद्र के कूल के हंस सियारों हीरा सिंह हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा से सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांद

जगमगत पूरन प्रताप अंबर जमीन जय जपत जाप सातो आकाश सातो पतार बिथरियो अदृष्ट जय करम जार सातो आकाश सातो पतार बिथरियो अदृष्ट

जावे सत श्री अकाल गुरबर अकाल देग तेग फतेह गुरु पंथ खालसे जी दिना दिन चढ़दी कला रखड़ी सच्चे पातशाह जी महाराज।

कहूँ सिमट भयो शंकर इकठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो।

पहला सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मंड सत्य तेरे ले सत्याकार सत्य तेरे करण सर्विचार सत्य तेरा अमर सत्य देवाण सत्य तेरा गुण सत्य प्रमाण सत्य तेरा क्रम सत्य निशान सत्य तुदा के लख करोड़ सत्य सप्ताह।

जुग जुग पैर उठाए ज्ञानी बुझेता है। सतयुग संतों का धर्म के रतवाओ, त्रत्र जते का जोर के रतवाओ, द्वापर तपे का

0: तग्न तू प्रस्फुट महला पहला
1: तग्न इंद्रि तग्नारी प्रकट पुरंदारी तग्न परि तग्न हति तग्न जिह्वा तग्न खे पितगाया पे बत्ते बढ़ता गया ब्रकत तले पार कर व्याह कुड़ कागल दो सिरा।